Big 106.2, The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: Big 106.2.

0: If you've ever set a ringtone to Kya Mujhe Pyar Hai, you're in the right place. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: मोर म्यूजिक, मोर स्टार्स, द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंडर, बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: You know what? Salary day obviously अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी hectic भी। Cash निकालो, bills और expenses के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए exchange center के चक्कर लगाओ।
2: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? E&Money मनी यूज करो।
1: क्या सैलरी के लिए?
2: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली E&Money मनी में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ।
1: जैसे क्या?
2: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से।
1: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
2: बिल्कुल, E&Money मनी के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो E&Money मनी के साथ फिक्र छोड़ो, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: Don't stop the beat. The big weekender, the biggest Bollywood hits non-stop. The part of the big weekender, Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक और हफ्ता गुजर चुका है बहुत ही तेजी से और फिर से सैटरडे को हम मिलने आ गए हैं। दिस इज मी शिरन ऑन बिग 106.2 और मिलेनियल वीकेंडर पे आज भी बहुत सारे खूबसूरत गानों के साथ मैं आई हूँ और आज मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ मानसी हैं। और हाउ आर यू मानसी?
1: आई लव दिस प्लेलिस्ट, आई एम अ फेलो मिलेनियल, आई थिंक दिस इज माय जैम एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू प्ले दीस अमेजिंग ट्रैक्स फॉर अस दैट आई लाइन अप।
0: यस, एक्चुअल जो टेक्निकल काम है वो तो मानसी करती है, लेकिन हाँ, बट द लाइनअप आई मस्ट से, हर हफ्ते हर सैटरडे को फ्रेश सॉन्ग्स और लाइक यादों के साथ, यू नो, सो मेनी मेमोरीज ईच एंड एवरी सॉन्ग, राइट?
1: या, राइट, दैट्स द ब्यूटी आई गेस ऑफ द मिलेनियल टाइम्स।
0: एग्जैक्टली,
1: वी रिमेंबर एवरी लिरिक्स,
0: यस,
1: वी रिमेंबर द मूवी, लाइक जैसे गाना बजा अभी कुछ दिनों से, इतनी कोई बहुत मैसिव हिट नहीं थी,
0: नहीं, या, बट इट्स सच अ फील गुड म्यूजिक, फील गुड, वो मोहित जान की आवाज, यू नो, दैट्स लाइक, दैट्स सो मच अ फील गुड, ना, वो फील गुड चीज जो है ना आजकल, मुझे लगता है होती है, कभी कभी होती है, लेकिन कभी कभी मिस हो जाती है।
1: फॉर ऑल द जेन ज़ीज हु लव इमरान हाशमी नाउ, ही वाज अ पार्ट ऑफ दिस मूवी एंड टिस्का चोपड़ा एंड इमरान हाशमी का जो रोल था वाज रियली अहेड ऑफ इट्स टाइम, वेरी वेरी गुड मूवी,
0: द मूवी एंटायरली वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम, या। सो आज ना मैंने सोचा कि हम लोग बातें करते हैं ऐसी कुछ मूवीज के बारे में जो कि मिलेनियल टाइम में, जिनको जो है एक्टर्स ने बहुत अच्छा एक्टिंग परफॉर्मेंस दिया, लेकिन उनको अवार्ड्स या एक्लेड्स इतने नहीं मिले जितना वो डिजर्व करते थे, बल्कि कुछ और ही मूवीज के लिए कुछ और ही उनको मिल गया, यू नो, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट तो मैं बोलना चाहूंगी ओमकारा, वाज अ ब्यूटीफुली मेड मूवी, सब जानते हैं, राइट, पीपल स्पीक अबाउट इट, राइट, सैफ की एक्टिंग के बारे में भी बोलते हैं, बट यू नो He did not win a national award for that, जो मुझे ऐसे लगा बहुत ही unfair सा लगा मुझे. I thought कि he should have got for that and not a हम तुम यार. हम तुम के लिए उसको national award मिला and ओमकारा के लिए नहीं मिला. Like थोड़ा सा मेरे को ऐसे अजीब सा लगा.
1: विशाल भरद्वाज again is a very niche audience.
0: Yeah, that's true.
1: Like not everybody would understand विशाल भरद्वाज का direction, his film making. बहुत अलग होता है. Shakespeare's inspired रहते हैं उनके most of the movies. Do you remember Omkara kis se inspired thi? What Shakespeare play or book?
0: Is it Othello?
1: It is Othello.
0: Yeah, it's Othello. Okay, thank you. Yeah, we go on the spot dal diya yaar. Okay.
1: But aisi bahut sare trivia ke saath Shireen and I got to keep you company and talking about movies that deserve awards. Mere haath mein hota to is movie ko main award deti.
0: Aur is gaane ko to I don't know really. I mean, I really don't know, but Eli re Eli coming your way, Kavita Krishnamurthy ki awaaz. Let's hear
1: Alka Yagnik ki awaaz.
0: Let's hear this.
1: Right here on Big 106.2, a part of Fun Asia Network.

0: जब से ये गाना श्रेया घोषाल की आवाज में सुना है ना मैंने, हैव यू हर्ड इट मानसी? श्रेया घोषाल, या सो यस, द सॉन्ग उसने जो है वो इंडियन आइडल के जो प्रोग्राम में शी सैंग इट विद अभिजीत. I have been like, wow, what if she would have actually, of course, Alka Yagnik is a legend, but still, you know, uski awaaz mein bhi itna khoobsurat laga tha ki mujhe laga ki wow, this is like such a feel good, usko aur zyada feel good, Shreya ko to pata hi hai na,
1: right.
0: She puts in so much more emotions, right, so that was like really nice, and aaj fir se sunke, oh ho ho ho, bahut sari yaadein taza ho gayi.
1: Vaise yaadein hi taza karti hai Shireen every single weekend with the big millennial weekend here on Big 106.2, part of Our Nation Network. Vaise Shireen khud bhi bahut कमाल सिंगर है.
0: थैंक यू सो मच मानसी. मैंने तुम्हारे लिए गाया था, यू रिमेम्बर, व्हेन आई हैड कम फॉर द ऑडिशन. यस यस यस यस यस,
1: या बट शी इज अ फैंटास्टिक सिंगर. यू आस्क हर अ सॉन्ग फ्रॉम द 90s, लेटेस्ट वन, कोई सॉन्ग फ्रॉम maybe retro.
0: Yeah,
1: she is a fantastic singer. Yeah,
0: but 90s is my favorite era because these kinds of songs to usi mein the. Mera sabse favorite, mujhe gana acha lagta hai 90s ka. Yeah,
1: there's a vibe yeah, to the 90s.
0: Exactly.
1: Yes.
0: So we were talking about movies jo ki bahut sare uske bare mein baatein hui lekin awards shayad utni nahi mili jitna ki wo deserve karti. For example, mujhe lagta hai ki Priyanka Chopra and Barfi, of course,
1: oh yes,
0: acting, yes, top notch.
1: Yes.
0: Mujhe lagta hai uska career best tha performance. I really think so. She got an award for fashion, so many awards. Barfi में उसको बस critically acclaimed awards ही मिल पाए हैं, मतलब film fair वगैरह इतने नहीं मिले जितने उसको मिलने चाहिए थे, क्योंकि उसी साल मेरे को लगता है विद्या बालन की कहानी भी रिलीज हुई थी, एंड दैट स्टोरी एंड एवरीथिंग वॉज सो नाइस कि आई थिंक वो ओवरशैडो हो गया. आई रियली डोंट नो. अगेन, हो सकता है जैसे मानसी ने पहले कहा, ये मूवी भी थोड़ी सी डिफरेंटली की
1: है. It was beautiful. Barfi is one of my all time favorites. Ranveer, Priyanka,
0: everyone, Ileana D'Cruz.
1: Ileana, the music.
0: Yes, oh my god.
1: It was beautiful.
0: I know. And I think Priyanka really played that well. Na?
1: And she worked really hard for the audition also. If you go through her interviews, to play that D-glam role.
0: Yes.
1: Immediately after doing like movies like Dostana, Fashion, the director was not convinced, so she had to literally convince him.
0: That's the thing, na, ki jab matlab bahut sare hum looks ki hi baat karte hain, fir aisi ek actress ko hum aisa wala role de dete hain na, nobody would expect, and it was like she really hit it out of the park, hai na. To mujhe lagta hai that was really amazing. I really wish usko thoda sa aur jo hai, लोग थोड़ा सा और उसको मोटिवेट करते हैं, सो दैट यू नो शी वुड रियली बी दैट एक्टर ऑफ सब्सटेंस ना, थोड़ा और अच्छी अच्छी मूवीज मिलती है उसको, मुझे ऐसा लगता है. रियली, आई रियली फील सो.
1: इन अर्ली 2000s दे वर ऑल एक्सपेरिमेंटिंग, अब विद ओटीटी एवरीबॉडी इज इवॉल्विंग, बट इफ आई आस्क यू विद प्लेइंग सम सॉन्ग्स फ्रॉम द अर्ली 2000s, योर फेवरेट प्रियंका चोपड़ा का गाना अर्ली 2000s एरा से?
0: तिनका तिनका इज वेरी फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइन.
1: लोगों को लगा था वो प्रियंका ने गाया.
0: हाँ, क्योंकि इतनी सिमिलर आवाज है ना. या तिनका तिनका इज लाइक my very favorite song. मुझे लगता है उसमें प्रियंका दिखती भी इतनी अच्छी है और गाना भी इतना अच्छा है. अलीशा चिनाई की आवाज, everything was very nice.
1: Absolutely. अब तिनका तिनका की बात की है तो let's play तिनका तिनका.
0: Oh really? Wow, so nice. See, I told you ना, मानसी की जो songs की lineup होती है ना, वो कमाल होती है. So here on Big Millennial Weekender, this is me Shireen and we are going to play for you तिनका तिनका. सुनिए, वापस जल्दी से आइए Big 106.2. This is me Shireen.

0: Once again, आतिफ असलम, again another singer जिनके इतने सारे गाने, मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जिसका कम से कम एटलीस्ट एक आतिफ असलम फेवरेट सॉन्ग ना हो, है ना? ऐसा कोई नहीं होगा.
1: True, especially in the early 2000s, we all had posters of आतिफ असलम, and that's what we do. We take you back to your teens, to your childhood with the big millennial weekend right here on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Yes, and हम लोग डिस्कस कर रहे थे about those kinds of movies and roles and acting जिनके बारे में बातें बहुत हुई हैं, शायद awards इतने नहीं मिले, उनको थोड़ा सा और deserve करते हैं वो लोग. Like for example, हंसी तो फंसी movie में परिणीति चोपड़ा, yeah. So मुझे लगता है कि actually she really did very well, lekin kyun yaar, kisi ne usko kuch bhi nahi diya, bhav hi nahi diya.
1: In fact, the movie was not even a hit, but over time it has become a cult with Gen Z.
0: ye mere ko samajh nahi aati ye cult kaise ban jata hai, main pehle hit kyun nahi hota, andaaz apna apna, har hit nahi hui, baad mein aake logon ko laga are ha yaar isko hit
1: karna hai tere dil mein.
0: True, so true. अभी लोग बोलते हैं, मेरे को तो उस टाइम पे एक्चुअली इट इज अ रीमेड मूवी फ्रॉम तमिल टू हिंदी.
1: ओके,
0: तो गाने भी रीमेड है, तो मुझे तो लगा था वाओ यार ये मूवी आ रही है, इट इज गोइंग टू बी अ हिट. मैंने देखा फ्लॉप हो गई मूवी, मेरे को समझ नहीं आई, लोगों को रोमांस समझ नहीं आता. फिर बाद में अब धीरे धीरे बात करने लग गए लोग उसके बारे में. सो आई वाज लाइक आई एम ऑलवेज शॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स, एंड परिणीति रियली डिजर्व्ड समथिंग फॉर द मूवी, है ना? उसको बहुत सारे क्रिटिकली एक्लेम्ड अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस ये सब मिला, लेकिन not really a good heavy award kind of
1: thing. But it's a very nice movie, badi mazedar si movie hai, Haseen to Phasi, Siddharth Malhotra, and of course Ada.
0: Yeah,
1: with her initial years before she got into like serious cinema.
0: I know,
1: but she's fantastic on Instagram, by the way. Ada Sharma, very, I love her on Instagram.
0: Very amazing, really, very true, very true. It's nice to see ki hum log usko, un logon ko jo hai Instagram, social media pe follow karke we can know more about them, right?
1: True.
0: So yeah, I really think Parineeti deserved that, but then theek hai, it's okay, it's fine. And at that time, hum baat bhi karte the ki Alia aur Parineeti mein se kaun tumhara favorite hai.
1: True.
0: You know, and I really thought that she would, but then uska itna nahi hua jitna, you know, she could have, but I don't know, probably Alia was a little more hardworking. I don't know, I really
1: it's very
0: don't
1: hard
0: know.
1: To compare both of them are brilliant actresses
0: in their own way.
1: True. So wo comparison karna bahut mushkil hai, but I think sometimes it is also the kind of movies you get. मतलब hard work सब करते हैं, थोड़ा बहुत किस्मत का भी एक रोल होता है.
0: Correct. किस्मत, that's so true. Luck is very very important. किस्मत बहुत ही ज़्यादा important है. मेरी बात में देख लो, ये जो अपना गला तैयार करके मैं बैठी थी इतने सालों से, लेकिन अब मुझे बताया गया डाबर की तरफ से कि जी हाँ, अब तुम्हारा गला तैयार है, एंड मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, राइट?
1: Absolutely. So, that's also hard work. Like we saw her auditioning and with a lot of others, everybody was talented there. Yeah, but sometimes you know, a little streak of luck does work.
0: Yes, definitely.
1: So,
0: it matters.
1: With her luck, she's all here.
0: Yes, और मेरा गला तैयार है, हर सैटरडे को मैं यहाँ पर आती हूँ. सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग. सो ऑन
1: जावेद अली की आवाज,
0: जावेद अली की आवाज में एक्चुअली पता है ये गाना मुझे पहले लगा केके की आवाज है, बट देन आई स्टैंड करेक्टेड, जावेद अली की आवाज है. इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल. लेट्स गो एंड लिसन टू द सॉन्ग
1: फ्रॉम द मूवी नकाब. वेरी वेरी अंडररेटेड. इफ यू आर अ फैन ऑफ अक्षय खन्ना फ्रॉम धुरंधर, यू हैव टू वॉच दिस वन.
0: यस, डेफिनेटली. सो बिग 106.2 पर मिलेनियल वीकेंडर, दिस इज मी शिरन. कीप लिसनिंग टू अस.

0: खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: Big 106.2 Big 106.2 The beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Big 106.2

चल मेरे भाई का बहुत ही खूबसूरत सा गाना अभी हम लोगों ने सुना है एंड आई थिंक करिश्मा एंड सलमान वर अ ग्रेट पेयर बैक इन द मिलेनियल टाइम्स. दे रियली डिड अ लॉट ऑफ मूवीज टुगेदर एंड ऑल ऑफ देम सभी में बहुत ही अच्छी जोड़ी. You know, they were really an amazing, iconic pair. Anyways, this is me, Shirin, और मैं आपके लिए जो हैं चटपटी बातें, that is Millennial Times की, साथ ही मैं बहुत ही खूबसूरत गाने लेकर आती हूँ हर सैटरडे को 10 to 12 on the Big Millennial Weekender. तो हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जो कि हैं बहुत ही उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया, उनको शायद रिकग्निशन मिला लेकिन उतना नहीं जितना उनको मिलना चाहिए था. So next who I'm going to talk about is Farhan Akhtar. I think फरहान अख्तर फ्रॉम द मूवी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक. अगेन कार्तिक कॉलिंग कार्तिक के गाने बहुत फेमस हुए एंड पीपल डिड टॉक अबाउट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द मूवी, बट देन द प्रॉब्लम वाज दैट ही वाज नॉट रियली टॉक्ड अबाउट एज एन एक्टर. मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा सा और जो है रिकग्निशन मिलना चाहिए था. द स्क्रिप्ट वॉज अमेजिंग. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वुड एग्री टू दिस, बट मुझे लगता है अगर आप भी जाके उस मूवी को फिर से एक बार देखेंगे तो दैट मूवी वॉज डेफिनेटली अहेड ऑफ इट्स टाइम्स एंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा और जो है रिकग्निशन कार्तिक के एक्टिंग को मिलना चाहिए था. दीपिका पादुकोण वॉज देयर इन द मूवी बट देन यू नो द एक्टिंग पार्ट, जैसे कार्तिक का पूरा कंप्लीटली उसका जो है टू डिफरेंट पीपल स्प्लिट पर्सनैलिटी टाइप का जो एक प्रॉब्लम था उसके, यू नो ही हैड दैट प्रॉब्लम इन दैट मूवी. सो दैट वॉज एक्सप्रेस्ड बाई हिम, एक्टेड आउट वेरी वेल बाई हिम एंड आई थिंक कार्तिक कॉलिंग कार्तिक वॉज डेफिनेटली अ मूवी विच शुड हैव बीन टॉक्ड अबाउट एंड फरहान अख्तर की परफॉर्मेंस शुड हैव बीन टॉक्ड अबाउट. सो ऑन दैट नोट लेट्स गो अहेड एंड लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग इन द वॉइस ऑफ राहत फतेह अली खान जी, आंखों में नींदे. बहुत ही खूबसूरत एक और गाना आप लोगों के लिए. Please do keep listening to me on Big 106.2, the Big Millennial Weekender. I keep you company from 10 to 12. This is me, Shirin.

0: 2.2 The Beat of Bollywood.
1: सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: Millennials Unite! Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the Beat of Bollywood.

वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर दैट ब्यूटिफुल सॉन्ग. मैं हूँ शिरिन, यहाँ पर आपके साथ 10 से 12 बजे तक हर शनिवार को बिग मिलेनियल वीकेंडर पे बिग 106.2 पर. तो मैं आपसे बात कर रही थी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स के बारे में जो हैं अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंसेस शायद दी, लेकिन उनको इतना रिकग्निशन नहीं मिला जितना कि उनको मिलना चाहिए था. थोड़ी बहुत बात हुई लेकिन ज़्यादा बात नहीं हुई. ऐसे ही एक एक्टर मुझे लगता है जॉन इब्राहिम है. जॉन इब्राहिम एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत सारी अच्छी मूवीज़ उनकी चली हैं, उनके बारे में बातें हुई हैं, उनको शायद कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं. लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस न्यूयॉर्क में थी, आई थिंक कैटरीना कैफ की परफॉर्मेंस उस मूवी में अच्छी थी, यस ऑफ कोर्स अच्छी थी, उसके वजह से किसी ने जॉन इब्राहिम की जो एक्टिंग है उसमें उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की. तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिजर्व करते थे. नील नितिन मुकेश भी थे उनके साथ, बट उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही हार्ट टचिंग थी. स्पेशली जब उनको हर जगह से जो है रिजेक्शन मिल रहा था, हर जगह से लोग उनको टॉर्चर कर रहे थे. दैट मूवी इज़ रियली वेरी वेल मेड. और जितना ज़्यादा कैटरीना को अटेंशन मिला जस्ट बिकॉज उनकी एक्टिंग जो है बाकी मूवीज़ के कंपैरिजन में इसमें बहुत अच्छी थी, बट डेफिनेटली जॉन ऑल्सो डिजर्व्स. सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक. यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम hustler_shirin. डू फॉलो मी एज वेल. हर शनिवार को मैं यहीं पर आपको मिलूंगी. एंड दिस इज अ रैप फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड ऑल द सॉन्ग्स एंड कीप मैसेजिंग मी ऑन इंस्टाग्राम. कीप लिसनिंग टू बिग मिलेनियल वीकेंडर ऑन बिग 106.2. लेट्स लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग एंड हैव अ ग्रेट डे.

0: Come on, Riya.
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है।
0: भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: wow.
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: I'm not listening to
1: you. कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा।
0: I'm not listening to you.
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: Okay, I'm not with her.
1: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: Okay, that's it.
2: Y2K hits, indie gems, Bollywood gold, your kind of playlist. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the B.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रपची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: Scraps, MSN chats and Bollywood bangers. It's your audio time machine. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: बिग सैलरी डे ऑब्वियसली अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी हेक्टिक भी। कैश निकालो, बिल्स और एक्सपेंसेस के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए एक्सचेंज सेंटर के चक्कर लगाओ।
1: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? ई एंड मनी यूज करो।
0: क्या सैलरी के लिए?
1: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली ई एंड मनी में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ।
0: जैसे क्या?
1: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से।
0: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
1: बिल्कुल, ई एंड मनी के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो ई एंड मनी के साथ फिक्र छोड़ो। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: Orkut scraps, MSN chats, and Bollywood bangers. It's your audio time machine. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: चीज 2 महीने हो गए यार आके, बिल्कुल मन नहीं लगता। मन करता है उसे 2000 में वापस चले जाओ। कितने बजे की है ना हम लोग, लेट नाइट मूवीज, 3-4 बजे का चाय, मिस यू यार, मिस यू सो मच।
1: हेलो अर्जुन, कैसे हो? सब सही है? बहुत मिस कर रहा हूँ तुम लोगों को, और जल्दी मिलते हैं, और तुम्हारा वो भी सुनना है, ते बोर्ड ने ना अतन सी तरह मिस यार।
2: हाय अर्जित, कैसे हो यार? इतना अच्छा टाइम था ना हम लोग साथ में, बड़ी जल्दी खत्म हो गए ना, मिलेंगे एक दिन जरूर। ओके, लव यू यार, मिस यू।
3: आप सुन रहे हैं बिग 106.2, द बीट ऑफ पॉप।

0: Beat of Bollywood.
1: तू मुझे चाहे न चाहे ये तेरे बस में तो है, और मैं तुझको न चाहूं ये मेरे बस में नहीं।